समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

विदर्भ नगरी एक सुशील वेद मित्र नामे द्विज होता, तो वेदशास्त्र संपन्न, त्याचा मित्र सारस्वत नामे ब्राह्मण, वेदमित्रास पुत्र सुगुण, सुमेधा नामे जाहला, सारस्वत सुत सोमवंत, उभयतांचे मित्रत्व अत्यंत, दशग्रंथी ज्ञान बहुत मुखोद्गत पुराणे, संहिता पदक्रम अरण ब्राह्मण, छंद निघंट शिक्षा जाण, ज्योतिषकल्प व्याकरण, निरुक्त पूर्ण दशग्रंथी, ऐसा विद्याभ्यास करिता

चतुष्षष्ठिकळा प्रवीण। ऐसे शिवयोगी बोलो न पावला तेथेची अंतर्धान। गुरुपदाम्बुज आठवून सुमती सद्गद क्षणक्षणा। पद्माकरासी सुख

वेद अग्निहोत्र पशु कृषि धन विद्या सर्वत्र घ्यावा समाचार क्षण क्षणा लेकरू भार्या अरिदास सदन गृहवार्ता

शास्त्र श्रवण शिव पूजन यथाविधि स्नान होम जपाध्ययन पंचयज्ञ गोवि प्रसेवन श्रवण मनन निज ध्यास पूर्ण अनालस्ये करावी सुरत निद्रा भोजन येथे असावे प्रमाण दान सत्कर्म अभ्यास।

अविद्या अतिमैत्री अतिपुण्य अतिस्मृती उत्साह धैर्य दान धृती वर्धमान असावी आपुले वित्त आयुष्य गृहछिद्र मैथुन औषध सुकृत

पिशुन तस्कर जारपतित चंचल कपटी नास्तिक अनृत ग्राम्य सभेसी नसावे निंदक शिव भक्ति उच्छेदक मद्यपानी गुरुतल्पक मार्गपाड़क कृतघ्न।

यफेन धवल श्वशुरगृही राहिला पुढिले अध्यायी कथा सुरस शिवयोगी दया करील भद्रायुस ब्रह्मानंद निशि दिवस श्रवण करोत विद्वज्जन भवगज विदारक मृगेन्द्र श्रीधर वरद आनंद समुद्र तो शिव ब्रह्मानंद यतीन्द्र जो जगद्गुरु जगदात्मा शिवलीलामृत ग्रंथ प्रचंड स्कंद पुराण ब्रह्मोत्तर खंड परिसोत सज्जन अखंड।

शिवयोगी शिकवी तसे श्रुति स्मृति पुराणोक्त पाही धर्म नीति वर्तत जाई माता पिता गुरु पाई निष्ठा असो दे

करावे शास्त्र श्रवण शिव पूजन यथाविधि स्नान होम जपाध्ययन पंचयज्ञ गोवि प्रसेवन श्रवण मनन निज ध्यास पूर्ण अनालस्ये करावी सुरत निद्रा भोजन येथे असावे प्रमाण दान सत्कर्म अभ्यास

अतिमैत्री अतिपुण्य अतिस्मृति उत्साह धैर्य दान धृति वर्धमान असावी आपुले वित्त आयुष्य गृह छिद्र मैथुन औषध सुकृत मंत्र दानमान अपमान ही सर्वत्र गुप्त असावी जाणिजे नष्ट पाखंडी शठ धूर्त पिशुन तस्कर जारपतित चंचल कपटी नास्तिक अनृत ग्राम्य सभेसी नसावे निंदक शिवभक्ति उच्छेदक मद्यपानी गुरुतल्पक मार्गपाड़क कृतघ्न धर्मलोपक त्यांचे दर्शन न भावे दाराधन आणि पुत्र त्यासी आसक्त नसावे अणुमात्र अलिप्तपणे संसार करोनी आसक्त असावे बंधु सोयरे श्वशु

व्रत शिवरात्र प्रदोष विधियुक्त आचरावे विशेष शिवहरि कीर्तन निर्दोष सर्वसांडूनी ऐकावे महापर्व कुयोग श्राद्ध दिनी व्यतिपात वैधृति संक्रमणी न प्रवर्तावे मैथुनी ग्रहणी भोजन न करावे सत्पात्री देता दान होय ऐश्वर्य वर्धमान अपात्री दाने दारिद्र्यपूर्ण शास्त्र प्रमाण।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।

श्रोताओं अब सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।

श्रोताओं आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है श्रीनिवास खड़े जी ने।

शिवयोगी शिकवि तसे श्रुति स्मृति पुराणोक्त पाही धर्म नीति वर्तत जाई माता पिता गुरु पाई निष्ठा असो देस

वेद अग्निहोत्र पशु कृषि धन विद्या सर्वत्र घ्यावा समाचार क्षण क्षणा लेकरू भार्या अरिदास सदन गृहवार्ता।

त्या अतिमैत्री अतिपुण्य अतिस्मृती उत्साह धैर्य दान धृती वर्धमान असावी आपुले वित्त आयुष्य गृहछिद्र मैथुन औषध सुकृत

पिशुन तस्कर जारपतित चंचल कपटी नास्तिक अनृत ग्राम्य सभेसी नसावे निंदक शिव भक्ति उच्छेदक मद्यपानी गुरुतल्पक मार्गपाड़क कृतघ्न धर्मलोपक त्यांचे दर्शन न भावे दाराधन आणिपुत्र त्यासी आसक्त नसावे अणुमात्र अलिप्तपणे संसार करोनी आसक्त असावे बंधु सोयरे श्वशुर

उपहार व्रत शिवरात्र प्रदोष विधियुक्त आचरावे विशेष शिवहरि कीर्तन निर्दोष सर्वसांडूनी ऐकावे महापर्व कुयोग श्राद्ध दिनी व्यतिपात वैधृति संक्रमणी न प्रवर्तावे मैथुनी ग्रहणी भोजन न करावे सत्पात्री देता दान होय ऐश्वर्य वर्धमान अपात्री दाने दारिद्र्यपूर्ण शास्त्र प्रमाण।

निर्दोष यश जोड़े तया की हा अध्याय हिमाचल भक्ति भवानी कन्या वेल्हाळ तीस वरोनी पयफेन धवल श्वशुर गृही राहिला पुढिले अध्यायी कथासुरस शिवयोगी दया करील भद्रायुस ब्रह्मानंद निशि दिवस श्रवण करोत विद्वज्जन भवगज विदारक मृगेन्द्र श्रीधर वरद आनंद समुद्र तो शिव ब्रह्मानंद यतीन्द्र जो जगद्गुरु जगदात्मा शिवलीलामृत ग्रंथ प्रचंड स्कंद पुराण ब्रह्मोत्तर खंड परिसोत सज्जन अखंड।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।

श्रोताओं अब सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।

श्रोताओं आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है श्रीनिवास खड़े जी ने।